0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Mixing in the house.
3: They

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood. Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
1: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हैवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा, योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ.
0: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
2: Experience an unforgettable evening as Gagan Mudgal brings you Jadu, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:08।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, 7:25 ऑन दिस थर्सडे की सुबह। 35 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, humidity at 56%, winds blowing at 8 kilometers per hour, highs of 39, lows of 33 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये क्या सुन रहा हूँ मैं यार, क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को यार, मतलब देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी होमवर्क।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: आई एम जस्ट जोकिंग, आई रियली लव दैट पीस ऑफ न्यूज़। नो होमवर्क इन यूएई पब्लिक स्कूल के चिल्ड्रन फ्रॉम केजी अप अंटिल ग्रेड 2, मतलब कोई होमवर्क ही नहीं ऑफ द ट्रेडिशनल काइंड। ऑफ कोर्स इट्स द बिगेस्ट educational change for the new academic year, जो कि 31st of August को शुरू होने वाला है। And ministry ने कहा that younger children should have more, and I completely agree। यार ये पहले क्यों नहीं हुआ? Play, reading, family interaction and rest, that's what's needed when you are at home as a child, right? ये नहीं कि आप मतलब घिसड़ पट्टी कर रहे हो, जैसे हम we should call it घिसड़ पट्टी, भाई घिस रहे हो अपने पेन बेफालतू में। It's not even like you're learning something, right? जो क्लास में कर रहे हो वही घर पर भी जाकर करना है। तो if you're doing it in class and you're doing it well, then why do you need to do it back home as well? So KG से लेकर grade 2 is going to have no traditional homework starting this new academic year, and that's what the biggest piece of news is coming out right 4 days before the 31st of August, which is back to school. This is the Big Breakfast with me, Sid, the first hour of the show. It is the early morning request hour. Kaun sa wo gana hai that gets you up and running? Share it with me. Request bhejiye 054-309-1062 par.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Yes, and what is that one thing that everybody is talking about? Of course, that we are heading out to Germany in the latest season of The Big Check-In. जर्मनी की वादियों में आपको लेकर जाएंगे, वहां पर आपसे एक सवाल भी पूछेंगे. नहीं, वाइल वी हियर इन दुबई, दैट्स व्हाट वी डू इन गुटन टाग दिलवाले, दैट्स द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट. इफ यू वांट टू हेड आउट विद टीम बिग टू जर्मनी इन द लेटेस्ट सीजन ऑफ द बिग चेक इन, ऑल यू गॉट टू डू इज व्हाट्सएप 0543091062 पर. डू नॉट एसएमएस. अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कन्वेंशनल एसएमएस कर रहे हैं. नहीं, व्हाट्सएप कॉन्टेस्ट है ये. सो क्या टाइप करना है आपको? बिग चेक इन स्पेस योर नेम, बिग चेक इन स्पेस अपना नाम, उसे व्हाट्सएप करो 0543091062 एंड देन वी प्ले अ वेरी चार्मिंग कॉन्टेस्ट विच कंबाइन्स द ब्यूटी ऑफ जर्मनी विद द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड. जर्मनी प्लस बॉलीवुड का एक कॉन्टेस्ट. इन केस यू थिंक यूल बी एबल टू डू वेल, वेरी वेरी सिंपल कॉन्टेस्ट. इट इज जस्ट अ फॉर्मैलिटी फॉर यू टू गेट योर नेम इन टू द ड्रॉ, बी वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी, राइट? सो बिग चेक इन स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बॉलीवुड।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. देयर आर टू थिंग्स दैट कैन कम इन द वे ऑफ एन इंडियन विन.
2: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: हु इज दिस मिस्टर सोनल दिनुशा? एंड सोनल दिनुशा हैज क्रिएटेड एक्चुअली history because he has become the first batsman after Zahir Abbas of Pakistan to score 80 plus in the first three innings that he has played against India. He is 25 years old and he is like just makes centuries against India at will. Aisa lag raha. He is 9 not out. Sri Lanka right now are 243 for 6 and they are leading by 30 runs. Aaj 5th and final day hai. Session 1 chal raha hai. But there's what is the other thing that can come in the way of an India win is टिप टिप वर्षा. पानी आग लगा सकता है हमारी उम्मीदों पर बिकॉज रेन इज प्रेडिक्टेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्पाइट दैट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिया विन इज 91%, ड्रॉ 6% एंड श्रीलंका के भी 3% चांस लोग दे रहे हैं उनके जीतने के. देखते हैं आगे क्या होता है. आई एम कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट टेस्ट मैच. वेरी इंटरेस्टिंग दैट्स हैपनिंग इन श्रीलंका. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. आखिरी मौका टू गेट योर एंट्रीज इन अगर आप दो पासेस जीतना चाहते हैं फॉर जिक रिप्रेजेंट्स अमनदीप ख्याल द स्टोरी टेलर फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दुबई. शो दैट्स कॉल्ड धक धक. इट्स गोना बी एन अमेजिंग इवनिंग, परफेक्ट फॉर यू टू अनवाइंड ऑन अ सैटरडे इवनिंग दिस कमिंग सैटरडे. And the show starts at 5:30 PM. आपको बताना है कि ये तीन गाने कौन से सिंगर ने गाए हैं.
3: ये दूरियां
1: गाना नंबर 1, ये दूरियां.

0: तेरी।
1: एंड गाना नंबर 3, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, दिस इज द अनप्लग्ड वर्जन। Some wonderful work in जब वी मेट एंड रॉक स्टार में भी उनके गाने बहुत ही अमेजिंग है। रिसेंटली अमर सिंह चमकीला में भी इन्होंने गाने गाए। ए आर रहमान के एक ये फेवरेट सिंगर भी हैं। सो इन केस यू फिगर इट आउट कि आवाज़ किसकी है, देन गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पे कॉल करो, जीतो दो टिकट्स फॉर जिक्र प्रेजेंट्स अमनदीप ख्याल लाइव इन धक धक।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: It is 8:38 on the clock on this Thursday ki subah, which feels more like a Friday. I've got Amar with me on the phone line. Amar Singh Chamkila, how are you?
2: आज गुड मॉर्निंग.
1: आप आपकी सफेदी की चमकार लेकर कहाँ जा रहे हो भाई?
2: थोड़ा टेंपल जा रहा हूँ, बाद में मीटिंग है.
1: अच्छा, मीटिंग है. और इतनी बड़ी मीटिंग के पहले टेंपल जा रहे हो या यूजुअली ऐसा करते हो आप?
2: नहीं नहीं, आज थोड़ा पूर्णिमा है ना.
1: अच्छा अच्छा,
2: बहुत दिन से गया नहीं था इसलिए जा रहा हूँ.
1: अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब क्लाइंट कुछ बहुत ही बड़ा है और आज मतलब छक्का मारोगे सीधा लॉन्ग वीकेंड के पहले, एक लॉन्ग शॉट आप खेलने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है?
2: नहीं, वो तो क्लाइंट तो मिलना ही है, वो तो होना ही है.
1: ये तो रोज की बात है, क्लाइंट्स को फोड़ना तो रोज की बात है.
2: नहीं नहीं नहीं, फोड़ना नहीं, ऑर्डर तो मिलना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है.
1: अच्छा अच्छा,
2: बट बड़ी बात तो ये है कि टेंपल में कभी कभी जाना चाहिए, और जैसे पूनम आती है, पूर्णिमा आती है, राखी पूर्णिमा है, तो जाना चाहिए, इसके लिए मैं जा रहा हूँ.
1: अब जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ मांग लेना, ठीक है ना? आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप तो दुबई में रहते हो, आपकी डॉटर स्टेज इन अबू धाबी. हाँ, ये क्या सिस्टम है यार?
2: सिस्टम कुछ नहीं है, एजुकेशन है.
1: अच्छा
2: में रहती
1: है. अच्छा, सो शी इज डूइंग कॉलेज इन अबू धाबी एंड शी इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल ओवर देयर.
2: या यूनिवर्सिटी में.
1: सो मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग सी बात होगी ना कि आपकी बेटी शी इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सो शी इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल एज वेल, वो भी मजा है, बट शी इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम यू एज वेल. सो यार अच्छा अच्छा सिस्टम, तो आप क्लाइंट तो फोड़ते ही हो, सिस्टम भी अच्छा फोड़ा आपने यार, वेरी नाइस.
2: By the way, I am a proud father.
1: हाँ.
2: She is in IIT Abu Dhabi, IIT Delhi Abu Dhabi campus.
1: That is incredible, यार. JEE भी फोड़ दिया.
2: JEE नहीं, COET करके international student के लिए exam होता है.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. I didn't know that. That there is a separate exam for international students, huh?
2: या CAET करके होता है एग्जाम, तो उसने वो भी अच्छा क्रैक किया था. फर्स्ट आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ही वाज इन फर्स्ट 10 स्टूडेंट.
1: वेरी गुड यार, दैट्स व्हाई आई कैन लाइक सेंस द रिलीफ, यू नो, जो रिलीफ पेरेंट होता है ना कि बच्चा पटरी पे आ गई उसकी गाड़ी, वैसा लग रहा है आपकी आवाज सुन के ना, एकदम संतोषी.
2: आई फील वेरी, आई एम अ प्राउड फादर.
1: आई मीन आई वुड बी अ प्राउड फादर एज वेल. दैट्स नॉट अ मीन अचीवमेंट एट ऑल. IIT में घुसना इज वेरी वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो अमर कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिग 106.2. व्हेन यू डू मीट योर डॉटर ओवर द वीकेंड, देन हम सब की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना, थोड़े लड्डू वड्डू भी लेके जाना, ठीक है ना?
2: Sure, thank you very much.
1: अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तीन गाने मैंने आपको सुनाए थे एंड पूछा था सिंगर का नाम. The songs were something like this. या फिर ये वाला गाना. डूबा रहता हूं आंखों में तेरी. पहले अटेम्प्ट में तो नहीं पास हुए अमर, उनकी बेटी ने तो डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था. पहले अटेम्प्ट में के कहा, दैट वाज द रॉन्ग आंसर. लेकिन सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है दुरुस्त है. करेक्ट आंसर इज
2: मोहित चौहान
1: इज द करेक्ट आंसर. And आपके जीते दो passes for this very special evening that's happening. Zikr presents Amandeep Khayal coming to Dubai for the very first time and show का नाम है धक धक. So Saturday शाम पहुंच पाओगे ना आप?
2: जी जी,
1: है ना? Saturday शाम 5:30 PM. So congratulations, enjoy the show.
2: Thank you very much. Thanks
1: take
2: for
1: care,
2: your call.
1: Pleasure talking to you, Amar bhai. Take care, yeah.
2: Bye.
1: And ye hai Amar, hamare aaj ke winner hai. Don't forget, this is that show that we've been talking about and everybody is talking about. That's what the buzz is. Saturday sham ko is going to be that nice laid back relaxed evening that you need and deserve. You can slow down, unwind with Amandeep Khayal. 5:30 PM ye show shuru hoga. Doors open 4:30. It's happening at Gems Al Barsha National School. You can buy your tickets exclusively on District
0: Big 106.2. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
3: हाई स्पीड ऑटोबान
0: majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
5: Experience an unforgettable evening as Gagan Mudgal brings you Jadu, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
6: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 8:46 on the clock on this Thursday morning, 27th of August. Congestion building up 44 per Alkhel Road, going towards Business Bay from D3, you'll find 4-5 minute ki there. Also 66 per Al Jadhav going towards E11. And then there's Sheikh Rashid Street getting busy going towards Dubai Frame, heading east. There is also D89 Airport Road per traffic aapko milega going towards Dera. And then the usual 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries will face 7 to 10 minutes ka delay.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: Bollywood.

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: इस सोनल दिनुषा को आउट क्यों नहीं कर पा रहे यार?
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: No, this is not funny anymore. ये fun and games खत्म हो गया. 302/6 हो गया श्रीलंका का स्कोर. सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, दे लीड बाय 89 रन्स एंड सोनल दिनुषा ही स्कोर्ड 80 प्लस इन हिज फर्स्ट थ्री इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया. फर्स्ट मैन आफ्टर ज़हीर अब्बास टू डू दैट. ही क्रिएटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स. वी जस्ट नॉट एबल टू गेट हिम आउट. अभी भी इन दिस सेकेंड इनिंग्स ऑफ श्रीलंका ऑल्सो वेन दे फॉलोड ऑन, ही इज 39 नॉट आउट of 86 balls. Kishara Nuwanta is also playing 37 runs not out. So yeah, I mean, it's a great fight, not a good fight, great fight that's been put up by Sri Lanka at home. Yeah, iska kuch karna padega. It's one of those things ke ye Sonal Dinusha ka kuch करना पड़ेगा यार. लेकिन आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको. आज सुबह का ये आखिरी बोर्डिंग कॉल है फॉर द बिग चेक इन.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Yes, what you got to do is just type out Big Check-in space your name. एक छोटा सा काम आपको करना है, व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन स्पेस अपना नाम टाइप करके टू 0543091062. दैट्स द नंबर 0543091062. इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स वी गोना प्ले गुटन टाग दिलवाले एंड देन वन ऑफ यू आर गोना गेट वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी विद बिग, विद टीम बिग, एंड इट इज इन द बिग चेक इन टू जर्मनी. सो बिग चेक इन स्पेस योर नेम टू 0543091062. फिलहाल टॉक्सिक रिलीज हो गई और जितनी तबाही इस फिल्म के रिव्यूज ने मचाई है इन द रीसेंट पास्ट और किसी फिल्म ने नहीं मचाई. समझ में नहीं आ रहा कि यार भाई ये बना तो दिया तो क्या बना दिया यार. कमिंग अप जस्ट अ व्हाइल, कीप इट लॉक्ड. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Yes, we're heading out to Germany in the latest season of The Big Check-In. I've got Roshan with me on the phone line. Roshan, good morning.
2: Good morning, Sid. How are you?
1: Very, very good. Yeah, Roshan is in the garments industry, huh?
2: Yes, yes, exactly.
1: कैसा चल रहा है आजकल धंधा कैसा है?
2: धंधा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है मतलब जैसा मार्केट होना चाहिए वैसा नहीं है थोड़ा फ्लक्चुएशन है बट चल रहा है धक्का मार मार के
1: थक गए हो देन यू नीड दिस ब्रेक टू जर्मनी हाउ डज दैट साउंड टू यू यार अगर जीत गए तो कैसा फील करोगे
2: आई विल बी ऑन क्लाउड 9 आई कांट एक्सप्रेस
1: Alright, Roshan, before you head out to Cloud 9, Cloud 1, par se aapko guzarna padega, okay? Here's what's going to happen. This contest is called Guten Tag Dilwale. So you got to be a bit German landscape mein hum log jane wale hain and thoda Bollywood ki baatein karenge. So it's going to be Germany plus Bollywood, right? So if you're able to answer the very simple question, basically it's about figuring out ki kaun si film ka dialogue hai jo main aapko sunaunga, okay? Agar aapne sahi jawab de diya, aapka naam chala gaya. Draw ke andar, bolo, done deal.
2: Done.
1: Okay, so I'm going to set up the scene पहले, okay? Scene set up करूँगा, and उसके बाद मैं आपको dialogue सुनाऊँगा, ठीक है? So the scene is something like this. दो लोग, two people are holding hands, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, under a clear starry night by Lake Constance. Lake Constance पे दो लोग हाथ पकड़े हुए हैं, they're holding each other's hands, and then what they say is this.
3: क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था
1: क्या तुमने कभी भी एक पल बताओ कौन सी फिल्म का ये बहुत ही गंभीर बट नॉट गौतम गंभीर डायलॉग है
2: आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स मोहब्बते
1: मोहब्बते इज द रॉन्ग आंसर बट बिकॉज धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है आपका एक और चांस आपको देता हूं इट इज शाहरुख खान यू गॉट दैट राइट शाहरुख खान एंड साथ में देयर इज माधुरी दीक्षित डोंट से कोयला अगर आपने कोयला कहा तो मैं कूद जाऊंगा यहां से
2: नहीं नहीं कोयला नहीं
1: इट्स अ रोमांटिक सीन माधुरी दीक्षित शाहरुख खान
2: DTPH दिल तो पागल
1: अरे बॉल बच गए आप देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है
2: मेरा दिल धक-धक होने लगा
1: दिल तो बड़ा है होना चाहिए मेरे पे पिक्चर बननी चाहिए यार एक दिल तो पागल है नहीं दिल तो इतना बड़ा हो माय गॉड यार थक गया क्लू देख देख के आप क्या थकोगे
2: थैंक यू
1: धंधे मंदे हो गए आपके लेकिन मेरे धंधे पे वांदे हो जाते भाई क्योंकि चक्कर ये ना देखो मैं बताता हूँ रोशन की इतनी मेहनत के बाद आपका नंबर लगता है यू गॉट लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस इसके बावजूद फिर देन द रैंडमाइजर पिक्स यू एंड देन अगर मैंने आपका नाम ड्रॉ में नहीं डाला मेरे को बहुत बुरा लगता है यार स्पेशली लॉन्ग वीकेंड से इतना पहले आप बताओ भाई कैसा फील कर रहे हो नाउ दैट योर नेम इज इनटू द ड्रॉ How are you feeling and how badly do you need this vacation? Tell me.
2: No, I really need this vacation because of the hectic schedule and what I've been facing from past 4 to 5 months.
1: Yeah.
2: So, break to banta hai. Achha kasa.
1: Ek bar zor se bol do. Thank you, Sid.
2: Thank you so much, Sid.
1: 50% stakeholder main bhi hu agar aapka number nikal gaya to theek hai take care roshan salian he is the winner today unka naam draw mein chala gaya 50% kya main kehta hu 51% stakeholder main hu is contest mein main jeet gaya hu roshan nahi but congratulations bro I mean keep your fingers crossed jab draw hoga usme se agar aapka naam nikla you will be heading out to Germany with team big in the big check in yeah all the best
2: thank you so much thank you
1: take care that is roshan hamare aaj ke winner hain draw entrant hain देखिए इफ यू डोंट फाइंड इट इजी वी मेक इट इजी फॉर यू दैट्स व्हाट द एंटायर स्पिरिट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज द बिग चेक इन में पार्ट लेने के लिए आप भी रोशन की तरह व्हाट्सएप करो 0543091062 पर क्या व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम बिग चेक इन स्पेस योर नेम 2054309 1062.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: 1 + 1 = 3.
7: That's not right.
6: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
7: Really? And these 4 designs to choose from.
6: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
7: Hurry, only T's and C's apply.
8: School's starting soon and we need a car.
9: Books, uniforms, everything.
8: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
9: And what if we need it for a short while?
8: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
10: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-in to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
5: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. The Big Breakfast, brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:10।
1: Bollywood.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
2: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी। आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी।
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।

0: राधारानी, नोबडी कैन डू इट लाइक मदर इंडिया में दैट कैरेक्टर. इफ यू थिंक अबाउट राधारानी, देन यू आर अ बिग बॉलीवुड फैन. दिस इज One big Bollywood fan saying goodbye to another. It's time for me to sign off from the big breakfast. Milunga aapse ab over the weekend.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Aisa lagta hai logon ko aaj. आपको लगेगा कि वीकेंड शुरू हो गया है, लेकिन नहीं, कल फ्राइडे, एक और दिन मुझे काम पे आना है. आपको नहीं जाना तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो आऊंगा 7 से 11 ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग, चाहे छुट्टी हो या ना हो. आई एम गोना बी विद यू ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट. इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय टू यू. लेकिन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. वी आर 106.2 बिग एफएम, 106.2 बिग एफएम. वहां पर यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू विन सम अमेजिंग प्राइजेस, टेक पार्ट इन पोल्स, बिहाइंड द सीन्स मस्ती मजाक कितनी होती रहती है. Amongst our team also, you get to see it out there. So 106.2 Big FM, that's our Insta handle. I'm Sid Seth, SIDSETH. Till tomorrow, sharp at 7. Enjoy the rest of your Thursday. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The beat of Bollywood, high-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2. Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
2: Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4?
3: 4।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The big mix, miss kiya gaya.
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: So, पहले आप बताइए सबको कि आपको कॉल कैसे आया है, सबसे पहला स्टेप क्या किया था?
3: मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करा, बिग चेक इन, स्पेस माय नेम, एंड आई गॉट अ कॉल।
2: वेरी सिंपल, देखा कितना कितना सीधा सच्चा सिंपल सा एंट्री बेस है। ओके, नाउ सेकंड बेस, आपको शॉर्टलिस्ट होना है, आपको गेस करना है कि ये जो डायलॉग मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि वैसे ही ट्रिप का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में ये फिल्म, ये कैरेक्टर और ये डायलॉग आ ही जाता है। ये डायलॉग जो है कौन सी फिल्म का, यू हैव टू गेस। ओके, यू रेडी भूमिका?
3: यस, ओके, डन।
2: ओके,
4: मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: Which film is this?
3: ये जवानी है दीवानी।
2: ये जवानी, ओ यार भाई, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाया गैस करने में। Okay, on a scale of 1 to 100, how excited are you?
3: More than 100, can I say?
2: Yeah. Okay.
3: Thank you.
2: So just like Bhumika, आपको करना क्या है, अगर आपको जाना है हमारे साथ जर्मनी बिग चेक इन में, आपको टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM। शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग। अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
3: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.
3: Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:08। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 39 degrees out there, लेकिन it feels like 50. मैं अभी नीचे थी यार, कसम से. I'm not even getting 50 degree लग रहा है. Humidity is on 43%.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big. 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and this is the Big Mix जो अभी recently पता लग रहा है यार ये सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है why am I not a kid?
3: लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा
2: हो गया भाई no homework for early years kindergarten से लेके grade 2 तक in public schools जो है there would be no homework less screen time in class and of course this one you know already reopening schedule जो है August 31st से school reopen हो रहे हैं लेकिन यार आई एम जस्ट वेरी बोलना सही रहेगा क्या मुझे बहुत जेलसी हो रही है यार मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था मुझे तो हर क्लास में होमवर्क करना पड़ता था समर वेकेशंस का होमवर्क देन छुट्टी लिया तो उसका होमवर्क काम पेंडिंग है उसका भी होमवर्क ही बन जाता था यू टेल मी 800-1062 पर कॉल करके कि व्हाट हैज बीन योर फेवरेट होमवर्क मेमोरी होगी क्या किसी की अच्छी खासी होमवर्क मेमोरी क्या क्या करते थे मम्मा क्या क्या करवाती थी होमवर्क करवाने के लिए डू लेट मी नो 800-1062 पर कॉल करके

1800-1062 पर कॉल करके कि व्हाट हैज बीन योर फेवरेट होमवर्क मेमोरी, होगी क्या किसी की अच्छी खासी होमवर्क मेमोरी, क्या क्या करते थे मम्मा, क्या क्या करवाती थी होमवर्क करवाने के लिए, डू लेट मी नो 800-1062 पर कॉल करके। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning, The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudin Hara.
3: Drive home a brand new Jetor. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
2: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ।
5: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं। So, Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का, गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का।
6: नहीं, देसी लड़का चाहिए।
5: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी?
6: देसी में मजा है ना।
5: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो। सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है।
7: कितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम।
5: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में, कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में। कौन सी मूवी का गाना है ये?
6: फना।
5: फना इट इज। कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग। कीप योर

0: 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: अगर आप शारजा की तरफ जा रहे हैं, of course you have to keep an eye on E11 and E311. अलखेल रोड पर आपको काफी हल्का कंजेशन मिल जाएगा with slow movements around Dubai Hills and Russell Core. अगर कहीं और ट्रैफिक में फंसे हो, do let me know 800-1062 पर कॉल करके.
0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
2: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 105.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Take 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड लॉन्ग वीकेंड का इंतजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. कल फ्राइडे है पर छुट्टी है, लेकिन कल एक और चीज है. फ्राइडे आता है, छुट्टी हो ना हो, लेकिन मेरा जो मूवी वाला सेशन है ना वो शुरू हो जाता है. एंड दिस टाइम आई वॉज रिमेम्बरिंग दिस क्लासिक बॉलीवुड कल्ट फिल्म ओम शांति ओम.
2: मैं अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं.
1: सोनू निगम की आवाज, ग्रेट कास्ट, लेकिन जो लिरिक्स हैं दैट पीक्ड एक्चुअली जावेद अख्तर साहब. एंड अगर आपको भी ऐसा ग्रेट सिनेमा और ये आइकॉनिक लिरिक्स पसंद हैं, कल जो है आप बहुत ही अच्छी शाम बिता सकते हैं. गगन मुदगल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर. इट्स गोना बी एन इनक्रेडिबल नाइट. शो शुरू होगा 8:15 पर. सो ऑल यू गोना डू इज डिस्ट्रिक्ट पर जाकर अपनी टिकट्स लो इससे पहले वो सोल्ड आउट हो जाएं. एंड अगर आपको जीतनी है आज भी टिकट्स, तो Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:07।
1: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: Participate in the Big Chicken Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड लेके चल रहे हैं आपको दिस टाइम जर्मनी बिग चेकिन के साथ. बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपना नाम रजिस्टर करना है. टाइप बिग चेकिन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. और जरा इमेजिन करो यार, दिस इज जर्मन क्लासिकल म्यूजिक. जर्मनी की सड़कों पे आप चल रहे हो, आपको मीठी मीठी पोटैटो डिशेज की खुशबू आ रही है, आपको फ्रेश प्रेट्ज़ल्स बेक हो रहे हो उसकी खुशबू आ रही है, और ये सुनते हुए आप चल रहे हो. व्हाट अ प्लेजेंट मौसम यार. वेल, अगर आपको अपना नाम शॉर्टलिस्ट करवाना है, ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप बिग चेकिन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट, एंड अगर आप वो जीत जाते हो आपका नाम हो जाएगा शॉर्टलिस्ट फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज. टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August, शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Dhak Dhak. For the very first time in Dubai, एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 PM. Show begins at 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।

0: वो कड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ and 4th September there's another release in cinemas. Film का नाम है बड़ा ही देसी मस्त सा नाम है यार जीवन बीमा योजना. I was watching the trailer. अर्शद वारसी का dual role है. Starring संजीदा शेख in the main leads with विजय राज, ब्रजेंद्र कला and अर्शद वारसी. क्या मतलब comedy timing क्या यार. मुझे तो मजे आ गए ये देखकर.
2: कौन है तू? जीवन या भीमा?
1: Two identities.
3: Wow, जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है.
1: बहुत बड़ी confusion है भाई.
4: भीमा बेटा भीमा.
5: एक बार और भीमा बोलो ना कसम से. तो आदमी से मेदू बड़ा हो जाएगा तू.
2: मैं चाय बना कर लाती हूँ.
4: भाभी थोड़ी सी ना अदरक डाल देना, तुलसी के पत्ते और कलर.
2: गिलोय.
6: आइटम भी तो घने ही बोल दिए तने. चाय में खीर ही बनवा लेता.
1: I just love Vijay Raaz. Dialogue delivery यार बहुत ही amazing, बहुत ही funny trailer है. September 4th को release हो जाएगी ये film in cinemas. And of course यार एक ऐसे adulting life से ना funny film तो चाहिए ही होती है. September 4th it is. Review will be out. Till then you keep listening to Big 106.2.
7: Yo yo yo yo. Got a nozzle.

0: तुम बीमार हो?
1: No.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, टनटनाहट, दिल को धड़क धड़कना, फरफराहट, थरथराहट, टप टपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टप टपाहट, भरभराहट, टप टपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुआ, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबुलाहट, झुबु

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07। Bollywood.

0: लड़के
1: ऐ जाती हूँ यार, मोरनी बन के जब भी मुझे किसी कैफे रेस्टोरेंट में जाना होता है, स्पेशली अब तो वीकेंड है, एक बार तो बाहर जाना मेरा बनता है, उसके बिना मेरा वीकेंड कंप्लीट होता ही नहीं है।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, and this time हम खेलने वाले हैं खाओ पियो ऐश करो। ऐसा होता ना यार, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, इतनी भूख लगी होती है कि हम देखते हैं कि एक डिश आ रही है, हम उसे देखते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं, पता लगता है कि वो तो हमारे टेबल की डिश थी, वो तो किसी और के टेबल की डिश थी। रेस्टोरेंट की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, आपको लगता है अगर यू आर अ बिगर एंड अ बेटर फूडी देन मी, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062। मैं खेलूंगी आपके साथ ये खाओ पियो ऐश करो गेम, लेट्स सी हाउ मच डू यू लव फूड। 800-1062, टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल बर्शा नेशनल स्कूल।

0: Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Thak Thak, for the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat, aur dil ko chhu lene wale kisse at GEMS Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ.
3: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं. So, Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का. गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का.
4: नहीं, देसी लड़का चाहिए.
3: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी.
4: देसी में मजा है ना.
3: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो. सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है.
5: जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम.
3: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में. कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में. कौन सी मूवी का गाना है ये?
4: फना.
3: इट इज. कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग.
6: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
7: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
6: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: इट्स 39 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन 50 डिग्री फील होता है. बाहर जाते ही वापस आते ही एक पानी का ग्लास तो मुझे चाहिए ही चाहिए. ह्यूमिडिटी लेवल्स 52% पर हैं.
6: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरीन. विजिट alras.me. Big 106.2.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले हैं खाओ पियो ऐश करो. हाय
2: हाय,
1: क्या नाम है आपका?
2: माय नेम इज सावरी.
1: सावरी, आपने लंच कर लिया?
2: यस, आई हैव हैड अ वेरी यमी लंच एक्चुअली.
1: ओके, क्या खाया लंच में?
2: सुशी.
1: ओह माय गॉड, सुशी, व्हाट अ फैंसी डिश. ओके, आई बिलीव आप बहुत बड़े फूडी हैं. आई एम गोना गिव यू टू ऑप्शंस ऑफ डिशेस.
2: ओके,
1: आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी है. ठीक है,
2: डन डन.
1: ओके, सुशी और पास्ता?
2: सुशी.
1: सुशी. सुशी और बर्गर?
2: सुशी.
1: ओके, सुशी और हक्का नूडल्स?
2: ना ना, सिर्फ सुशी.
1: सुशी और डंपलिंग्स?
2: दैट्स अ टफ वन. सुशी.
1: ओके, सुशी और सांभर चावल?
2: सांभर चावल.
1: ओह माय गॉड, सुशी को हरा दिया सांभर चावल ने. ओके ओके,
2: इट्स अ कंफर्ट फूड.
1: आई गेट इट. सांभर चावल या बैंगन का भरता?
2: ओह सांभर चावल, आई डू नॉट लाइक एग्प्लांट.
1: ओके, सांभर चावल या आलू की सब्जी?
2: सांभर चावल.
1: सांभर चावल या मिक्स वेज?
2: सांभर चावल.
1: लास्ट वन, सांभर चावल या राजमा चावल?
2: I'll go for rajma chawal.
1: Oh my god, मैं बता रही हूँ, सुशी हो या राजमा या सांबर चावल हो, चावल wins यार.
2: Yeah, yeah, 100%.
1: Okay, thank you so much. मैंने देख लिया कि आप फूडी, चावल वाले फूडी हो, है ना?
2: Yeah, yeah, you can say that for sure.
1: If you think you're a better foodie or a bigger foodie than Savri, do call me 800-1062 per. Holy, holy, get this.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुन सुनियो, सुना क्या इस इवेंट के बारे में? हैपनिंग ऑन 29th of August.
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ, एंड मैं बात कर रही हूँ 29th August की शाम की. अगर आपको एक ऐसी शाम चाहिए वेयर यू वांट टू स्लो डाउन, अनवाइंड योरसेल्फ, दिस इज अमनदीप खयाल. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. शो का नाम है धक धक. शेर और शायरी होंगी, बहुत सारी सुंदर कहानियां होंगी, ऑफकोर्स विद अ वार्म चाय एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. Doors will open at 4:30 PM. Show start होगा 5:30 PM. Tickets आपको मिल जाएंगी 199 दिरहम से. Available exclusively on District, including high tea and a free parking. लेकिन अगर आपको tickets जीतनी है, all you gotta do is keep it locked to Big 106.2.
2: दिल ही तो है, दिल ही तो है.
0: That evening of 29th of August, अमनदीप खयाल के साथ. Keep listening to Big 106.2.

0: करके।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: 4:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: जैसे जैसे शाम पड़ती है टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है। 38 डिग्रीज आउट देयर विद 54% ह्यूमिडिटी।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. और अगर आपका लॉन्ग वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना है, स्क्रीन्स के साथ जरूर बन सकता है. ओटीटी एंड सिनेमा हॉल में बहुत सारा कुछ रिलीज हो रहा है. व्हाट इज इट? नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हो रही है, नाम है उसका द विस्पर मैन बाय द बेस्ट सेलर नॉवल बाय एलेक्स नॉर्थ. क्राइम थ्रिलर है. सो बेसिकली यू विल बी हुक्ड टू योर स्क्रीन्स. बिंज वॉच करना है, 3 दिन की लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी है, और क्या चाहिए यार इससे बढ़िया सीरीज के अलावा. सिनेमा में टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स रिलीज हो चुकी है. एक्शन गैंगस्टर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास, स्टारिंग यश इन डुअल रोल. लेकिन अगर आपको नॉस्टैल्जिया में वापस जाना है, हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन रिलीज हो चुकी है सिनेमाज में टू सेलिब्रेट 25 ईयर्स ऑफ हैरी पॉटर. लेकिन बात यह है यार, जब मैं पार्ट 1 देख लेती हूँ ना, मेरा मन करता है मैं सारे पार्ट वापस से देख लूँ. बट द गुड पार्ट इज We got 3 days to binge watch everything. Let me know अगर आप इसके अलावा कुछ और binge watch करने वाले हो. Message करो मुझे 054-309-1062 पर. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: बिग 106.2 से मैं अवनी आपके साथ एंड बहुत सारी गेट रेडी विद मी की रील्स देख ली हैं, बट दिस टाइम इट्स टाइम टू गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स पर मंथ, दैट्स फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. सो इस बार जब स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, आपकी टेंशन और कम हो गई है विद सेल्फ ड्राइव. तो दिस टाइम आपके स्कूल के बैकपैक्स हैं या नहीं, लेकिन आपकी रेंटेड कार ऑलरेडी रेडी है. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com. Missed your morning buzz?
4: Uthale re baba.
1: Yes or no?
5: Yes, we're heading out to Germany in the latest season of The Big Check-In. I've got Roshan with me on the phone line. Roshan, good morning.
6: Good morning, Sid. How are you?
5: Very, very good, yeah. Roshan is in the garments industry, huh?
6: Yes, exactly.
5: Kaisa chal raha hai aajkal, dhanda kaisa hai?
6: Dhanda thoda upar niche chal raha hai, matlab jaisa market hona chahiye. वैसा नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट चल रहा है।
5: टू पीपल आर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं अंडर अ क्लियर स्टारी नाइट बाय लेक कॉन्स्टेंस एंड देन व्हाट दे से इज दिस।
7: क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था?
5: क्या तुमने कभी भी एक पल, बताओ कौन सी फिल्म का ये बहुत ही गंभीर नॉर्थ गौतम गंभीर डायलॉग है?
6: दिल तो पागल
4: अरे
6: है।
5: आप देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है? बताओ भाई कैसा फील कर रहे हो नाउ दैट योर नेम इज इनटू द ड्रॉ?
6: नो, आई रियली नीड दिस वेकेशन बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल। थैंक यू सो मच सिड।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: There's heavy movement on Sheikh Zayed Road, particularly around World Trade Center, DIFC and downtown areas. Al Khail Road or Sheikh Mohammed bin Zayed Road पर भी आपको heavy congestion मिल सकता है. Of course, evening commute शुरू हो चुका है. कल छुट्टी है, लोगों को जल्दी घर वापस जाना है. अगर आप कहीं और traffic में फंसे हो, do let me know. Call करके 800-1062 पर.
1: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. With zero penalty on early returns. Big 106.2. Big. Aap sun rahe hain Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
0: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक करीब रिंग द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 1 + 1 = 3
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from?
2: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: School's starting soon and we need a car.
5: Books, uniforms, everything.
4: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
7: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
8: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
9: AC से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
8: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
10: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: आई थिंक पिछले 3 दिनों में मैंने कम से कम 300 बार ही गूगल किया है कि सोहेल स्टार कब दिखेगा, क्योंकि उसके बाद आई थिंक विल गेट अ लिटिल रिलीफ फ्रॉम दिस गर्मी। इट्स 38 डिग्रीज लो जाना है, अराउंड 33, वेरी वेरी ह्यूमिड टुडे, 62% पर ह्यूमिडिटी।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज तो घर जाते जाते मतलब ट्रैफिक भी अच्छा लग रहा होगा बिकॉज वी गेटिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड. गुड इवनिंग, मैं हूं मानसी. दिस इज द बिग थ्रिल. व्हाइल यू हेडिंग बैक होम एवरी सिंगल इवनिंग वी जैम हियर. बाथरूम सिंगर्स के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्सर्ट. गाना आया ना आया, अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो बस दिस इज वेयर यू नीड टू बी. आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी. इट्स टाइम
1: कारियोकी.
2: इनफैक्ट मैं इतनी इंप्रेस हो चुकी हूँ अपनी कारियोकी से कि मैंने अपनी कैरियोके मशीन ठीक करा ली है एंड मैं अकेले कॉन्सर्ट करती हूँ. तो अगर आप भी मेरी तरह बस गाना गाने का शौक रखते हैं, आई एम श्योर दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट ट्रैक्स एज वेल. आहा,

I'm sure आपने गाना गेस कर लिया. दिस मूवी इज माई अल्टीमेट गिल्टी प्लेजर. मतलब आज भी इवन आफ्टर इयर्स मुनीश बहल का वो डायलॉग आई टोटली रेजोनेट विद कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते हैं. फिलहाल अगर आपने गाना पहचान लिया है एंड आप गाते हैं, then give me a call on 800-1062. You can also send me a message on 054-309-1062. It's time for the karaoke.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
5: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy

0: that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: बम्पर टू बम्पर सिचुएशन अगर आप मनारा के आसपास हैं, स्कीम 2 अगेन पैक्ड इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स मदीना जुमेरा, इट इज स्टैंड स्टिल, 18 टू 25 मिनट डिले उस पूरे रूट पर. ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू आर टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद, 45 मिनट डिले. हो गया लॉन्ग वीकेंड शुरू. दुबई मॉल के पास भी आपको पैची ट्रैफिक मिलेगा शेख जायद. राइट नाउ 38 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
3: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
4: Sham! Yeah, Rajo!
5: Shane ne re, Baba. Aapte, Baba, Babu Rao, Ganpat Rao, aapte. Bol.
3: Big 106.2. The

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: मजा आ गया अहमर. When you started talking to me, right? मुझे लगा अहमर is very serious types. Office में से good morning, hello बोलोगे तो he won't reply. But the moment you started singing, suddenly सब माहौल change हो गया.
1: बिल्कुल.
0: तो आप serious type के हैं ना वैसे तो?
1: बिल्कुल accountants होते ही हैं.
0: नहीं हमारे office के accountants तो बिल्कुल भी serious नहीं है. वो किसी चीज को seriously नहीं लेते
1: हैं. हम लोग हमको pressure रहते हैं, फिर उसके बाद अपने exertions को निकालने के लिए, calm down होने के लिए
0: बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं आप. बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं. आई थिंक इट इज द बेस्ट वे टू अनवाइंड, टू रिलैक्स. एंड प्लीज कीप सिंगिंग, यू आर माइंड ब्लोइंग.
1: थैंक यू.
0: देखो चलो आप हंसे तो सही ना, वरना मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी. कि क्या हो गया इतनी गुस्से में, क्यों ये ट्रैफिक की वजह से क्या कोई और बात है ऑफिस की. बट एनीवे यू हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस अहमर.
1: थैंक यू.
0: बाय
1: बाय.
0: ये कैरियोकी वाली यू हेडिंग होम, वी सिंग वी जैम. गिव मी अ कॉल अगर आप भी गाना चाहते हैं 800-1062 पर.
2: कैरियोकी 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अलार्म्स लगाने का, लंच बॉक्स में क्या दे सोचने का टाइम आ गया. इट्स बैक टू स्कूल सीजन एंड ऑफ कोर्स ऑल द पेरेंट्स आर प्रेपिंग अप फॉर बैक टू स्कूल दिस लॉन्ग वीकेंड. इन फैक्ट दिस बैक टू स्कूल सीजन इट्स आल्सो टाइम टू पावर अप फॉर द एआई एम्पलीफाइड लर्निंग एट शराफ डीजी. यू कैन शॉप फॉर लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड गेट अ चांस टू विन योर परचेज बैक अप टू 5,000 दिरहम्स विद यू बाय वीपे. प्लस students and teachers enjoy an exclusive 5% discount. So what are you waiting for? Just head to Sharaf DG showrooms aaj hi for the best back to school deals in town. Big.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: रोमांटिक गाना नहीं, जिंदगी में रोमांस ऐड करने वाली हूँ मैं इस लॉन्ग वीकेंड. सैटरडे को क्या प्लान है? जो भी प्लान है जस्ट कैंसिल इट. अमनदीप ख्याल इज कमिंग टू दुबई विद हिज शो धक धक. अब इफ यू नो ऑफ हिम देन आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड, इफ नॉट गूगल हिम. एंड आज ही मेरी अमनदीप से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि कई सिंगल लोग धक धक देखने आए और डबल होके बाहर निकले. सो इफ यू आर सिंगल, परफेक्ट टू फाइंड लव. एंड इफ यू आर इन लव, आई थिंक थोड़ा सा प्यार का तड़का और लग जाएगा. इफ यू बिलीव इन ओल्ड स्कूल मॉडर्न रोमांस देन अमनदीप ख्याल इज द परफेक्ट गाय फॉर यू. ही इज कमिंग हियर. आई गॉट कपल इनवाइट्स टू गिव यू इन जस्ट बिट. सारी डिटेल्स आपको मैं देती हूँ. फिलहाल लॉन्ग वीकेंड है, माहौल बना हुआ है. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 1 + 1 = free!
1: That's not right.
0: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
1: Really? And these 4 designs to choose from?
0: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
1: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
5: Insurance market. .ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
7: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com.
8: Missed your morning buzz?
9: Hey, utha le re deva, utha le re baba.
8: Yes or no?
10: Yes, we're heading out to Germany in the latest season of The Big Check. And I've got Roshan with me on the phone line. Roshan, good morning.
11: Good morning, Sid. How are you?
10: Very, very good, yeah. Roshan is in the garments industry, huh?
11: Yes, exactly.
10: कैसा चल रहा है आजकल धंधा कैसा है?
11: धंधा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब जैसा मार्केट होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट चल रहा है.
10: Two people are holding hands, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, under a clear starry night by Lake Constance. And then what they say is this.
12: क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था?
10: क्या तुमने कभी भी एक पल, बताओ कौन सी फिल्म का ये बहुत ही गंभीर और नॉट गौतम गंभीर डायलॉग है?
11: दिल तो पागल
9: अरे
11: है
9: भाई,
10: आप देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है? बताओ भाई कैसा फील कर रहे हो नाउ दैट योर नेम इज इनटू द ड्रॉ?
11: नो, आई रियली नीड दिस वेकेशन बिकॉज़ ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल. थैंक यू सो मच सिड.
13: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
14: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
15: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
13: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर

0: वीकेंड वाली फील्स राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. वैसे मेरी तरह सिंगल हो तो लॉन्ग वीकेंड पे आप जितनी देर सोना चाहो सो सकते हो, बट जो पेरेंट्स हैं उन्हें तो बच्चों के साथ साथ अपना स्लीप स्केड्यूल ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मंडे से स्कूल है.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई एम श्योर यू आर बिजी प्रेपिंग अप. इट्स बैक टू स्कूल फ्रॉम मंडे एंड स्कूल पिकअप ड्रॉप ऑफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा. अब इस सिलसिले के लिए इफ यू लुकिंग टू रेंट अ कार देन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 1099 पर मंथ. एग्जैक्टली 1099 दिरहम्स पर मंथ. फ्लैट रेट है फॉर द ईयर. जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो आई थिंक एक तैयारी जो है वो सेल्फ ड्राइव आपकी कर देगा. दैट इज टू गिव यू द बेस्ट रेंटल कार. सो डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट. selfdrive.ae इट इज.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: हैंडमैन हो ही नहीं रही है सड़कों पे, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल द लॉन्ग वीकेंड इज हियर एंड ब्रिंगिंग इन द लॉन्ग वीकेंड
1: बड़की शहर की लड़की।
0: फिलहाल आपकी लड़की ने फ्लैश करना सीख लिया है। मुझे फ्लैश ही करना नहीं आता था, लोग ऐसे ही मुझे फ्लैश करे जा रहे थे, तो मैंने भी फाइनली सीख लिया है। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है, रोड पूरी खाली है, बंदा अपनी स्पीड लिमिट पे चल रहा है, फिर भी लोग पीछे से फ्लैश क्यों करते हैं भाई? एज अ न्यू ड्राइवर गिव्स मी एंग्जाइटी, आई एम श्योर ऑल द न्यू ड्राइवर्स वुड अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहे हो ये। फिलहाल आपको रिमाइंड करा रही हूँ दैट वी टेकिंग यू टू जर्मनी दिस ईयर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है फॉर द बिग चेक इन, फटाफट सेंड अस अ व्हाट्सएप बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062।
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Long weekend aa gaya hai, and is long weekend par, if you want to enjoy a slow evening with some poetry, soul-stirring stories and garam-garam chai, the best way to unwind on the 29th of August, zikra aapke liye lekar aaye hain India ke celebrated storyteller Amandeep Khayal. इंड बाय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. शो का नाम है धक धक, लोगों के दिल की धड़कने ये बढ़ा देता है. एंड अगर आप अपने टिकट्स बुक करना चाहते हैं, डू इट राइट अवे बिफोर दे आर सोल्ड आउट. एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट पे, प्राइज्ड एट 199 दिरहम्स, व्हिच इंक्लूड्स योर हाई टी एंड फ्री पार्किंग. ये होने वाला है द जेम्स अल बर्शा नेशनल स्कूल. फिलहाल यहाँ भी टिकट्स जीतने का मौका आपके पास था. ऑन द फोन लाइन संजय जी, गुड इवनिंग.
2: हेलो,
1: ये कहाँ आप बिना नेटवर्क की सड़कों पर घूम रहे हो?
2: जी मानसी, मेरे को पता नहीं है.
1: पता ही नहीं है कहाँ हो?
2: सिटी के बीच में पूरा नेटवर्क होगा.
1: अच्छा, कहाँ घर जा रहे हो?
2: हाँ, अभी बस घर निकल रहा हूँ.
1: क्या प्लान लॉन्ग वीकेंड का?
2: लॉन्ग वीकेंड का स्टेकेशन बुक किया है.
1: अरे वेरी नाइस, तो फिर कैसे आ पाओगे इस शो में अगर आप स्टेकेशन पे जा रहे हो?
2: टाइम निकाल लेंगे थोड़ा.
1: ये देखो, इसे कहते हैं शिद्दत. वैसे मुझे बात बताओ, जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ है संजय?
2: प्यार तो ज्यादा नहीं, कुछ दो तीन बार हुआ होगा.
1: दो तीन बार हुआ होगा. अच्छा, शादी वादी हो गया या सिंगल हो आप?
2: नहीं, शादी हो रही है.
1: तो वो तीसरा वाला मतलब शादी में बदल गया?
2: हाँ.
1: कि वो अलग ही डिपार्टमेंट है ऑल टुगेदर?
2: करेक्ट.
1: अच्छा, वो अलग ही डिपार्टमेंट है ऑल टुगेदर. ये देखो ये देखो, तो वो जो पहले तीन प्यार थे वो क्यों अधूरे रह गए संजय?
2: वो तो पहला प्यार था स्कूल के टाइम पे.
1: अच्छा, तो वो गई आप गए?
2: नहीं, ऐसे ही वन साइडेड था, मतलब उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं.
1: अच्छा, उसकी तरफ से कुछ था ही नहीं. दूसरे और तीसरे में क्या प्रॉब्लम हो गई थी?
2: वो भी ऐसे ही था, कैजुअल था, कोई
1: कैजुअल
2: अभी कुछ ऐसा पता नहीं था.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. जितने भी लोग कैजुअल वाला प्यार करते हैं ना, उन्हीं की अरेंज मैरिज होती है. हम जैसे सच्चा प्यार करके बैठ के जो लोग रहते हैं ना, सिंगल रहते हैं. हाँ भी बोल रहे हैं, ये देखो हाँ भी बोल रहे हैं. फिलहाल मैंने आपको गाना सुनाया था, बड़ा अच्छा गाना है, रॉकस्टार से. आवाज किसकी थी?
2: आवाज थी मोहित चौहान.
1: बिल्कुल सही जवाब, कंग्रेचुलेशंस. दो टिकट्स आपके हुए हैं. आई गारंटी यू कि जब आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ आएंगे तो वो पहले दूसरे तीसरे प्यार को भूल जाएंगे एंड एक नया लेवल ऑफ रोमांस बाहर लेके जाएंगे आफ्टर द शो. दैट इज माय गारंटी.
2: राइट,
1: मुझसे ज्यादा मिलना नहीं उस शो में, वरना मैं बीवी के सामने पूछ लूंगी कि वो पहली दूसरी तीसरी कहाँ है. ठीक है, हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड, कंग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू सो मच, बाय
1: संजय.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: जिस हिसाब से आज शाम ट्रैफिक है, आधा लॉन्ग वीकेंड कहीं ट्रैफिक में ही ना निकल जाए, ना गुजर जाए. फिलहाल ब्रिंगिंग इन द लॉन्ग वीकेंड, मैं हूं मानसी एंड दिस आर ऑफ द शो. आप में से कोई होने वाला है शॉर्ट लिस्ट फॉर द अल्टीमेट ट्रिप टू जर्मनी. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन एंड इफ यू स्टिल हैवंट मैसेज्ड अस, आपने व्हाट्सएप करना है टू रजिस्टर. डू इट राइट अवे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. रैंडमाइजर एक नाम ढूंढ के निकालेगा, तो फटाफट व्हाट्सएप करो बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा सेंस अभी बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: 1 + 1 = 3।
4: That's not right.
3: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
4: Really? And these 4 designs to choose from?
3: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
4: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
6: Yo, it's Alfred, you see? InsuranceMarket.ae. Car, health, home, life, travel and some business too. 30,000 reviews, we've got the crew. InsuranceMarket.ae. Largest in the UAE. InsuranceMarket.ae.
7: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more. Featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
10: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34। काफी ह्यूमिड माहौल बाहर 62% पर।
10: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: The beat of Bollywood. ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
7: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: मैं जिंजर लेमन टी पीते पीते आपको ये बता रही हूँ कि एक घंटे का डिले स्टिल है शेख जायद पर। इट इज क्रेजी ट्रैफिक दिस इवनिंग, हेवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद। एक घंटा दो मिनट का डिले पैक्ड है डेरा से, इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स गुरेर, फहीदी, ऑल द वे टूवर्ड्स अजमान। वेरी वेरी स्लो मूविंग, हैवी ट्रैफिक स्टिल ऑन द हेसी स्ट्रीट इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी। बहुत ही स्लो मूविंग है।
7: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
9: Tum bimar ho?
10: No.
9: To leti kyun?
10: Meri body mein sensations hote hain, bills unko control karte hain.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल टाइम हुआ है आपको आपकी ड्रीम हॉलिडे पे ले जाने का. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड एंड शराब डीजी, आर ट्रैवल पार्टनर्स एएफसी हॉलिडेज. यस, वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी दिस ईयर. बट चेक इन करने के लिए रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. बिग चेक इन योर नेम टू 0543091062. फिलहाल रैंडमाइजर ने ढूंढ निकाला है निखिल को, जिन्होंने जब फोन उठाया तो पीछे से आवाजें आ रही थी. मैंने बोला निखिल मम्मी डांट रही है क्या, तो निखिल ने कहा नहीं बीवी है ना निखिल. तो बीवी क्यों डांट रही है?
2: अरे नहीं.
1: अच्छा नहीं डांट रही है,
2: लेट आया तो ऑफिस से.
1: अच्छा इसलिए डांट रही थी.
2: बोले थे अभी वीकेंड चालू हो गया तो फिर क्यों लेट आ रहे हो आप.
1: दिखाया नहीं कि एक एक घंटे का ट्रैफिक है आज हर जगह.
2: अरे बाप रे, मैं वही अब कोशिश कर रहा था इतने में आपको.

0: कॉल आ गया,
1: बहुत बहुत सॉलिड डांट पड़ रही थी बाय द वे निखिल को जब मैंने कॉल किया है। चलो निखिल मैं थोड़ा सा आपको मौका देती हूँ कि 4-5 दिन बीवी से दूर रहो। हंस भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते, इतनी खराब पोजीशन में फिलहाल निखिल। निखिल जर्मनी गए हो आप पहले?
0: नहीं
1: निखिल, आपको हम दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी। वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन प्ले अ डायलॉग। आपने बस गेस करना है कि वो डायलॉग किस मूवी से था, ठीक है?
0: ओके।
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अब थोड़ा सा माहौल बनाते हैं जर्मनी का। निखिल सोचो तुम जर्मनी में हो, ठीक है? तुम बर्लिन में हो। ट्रेन स्टेशन पे सडनली एक बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड तुमसे टकरा जाती है और तुम उसको और उसके करंट पति को कुछ ऐसा बोलते हो।
3: मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है। किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हमेशा हंसती रहे। हम इसे मोहब्बत कहें तो मोहब्बत से।
1: मूवी कौन सी थी?
0: वी जारा।
1: बिल्कुल सही जवाब। बट निखिल मुझे एक बात तो बताना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा?
0: आप तो सीधा ही मेरी जर्मनी में वहीं पर पिटाई चालू हो जाएगी।
1: ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी मिल जाए जर्मनी में, है कोई?
0: अरे नहीं नहीं, नहीं।
1: यार निखिल ना बहुत छुपा रुस्तम है, बहुत छुपा रुस्तम है। बाद में इसकी कहानियां पता चलेंगी, बट फिलहाल निखिल कंग्रेचुलेशंस, आप हो गए शॉर्ट लिस्ट। एंड अब इंतजार कीजिए, फिंगर्स क्रॉस अगला फोन आपको जब आए तो वो यही आए कि बीवी को संभालो, हम तुम्हें जर्मनी ले जाने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय।
0: क्या बात है,
1: बाय निखिल, बाय।
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: सडनली गर्मी भी अच्छी लगने लगती है, राइट? जब आपको पता है इट्स द वीकेंड. इन फैक्ट इट्स अ लॉन्गर वीकेंड. आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड, एंड इफ यू हैव नॉट मेड एनी प्लान्स, आई हैव गॉट द परफेक्ट वन फॉर यू टुमारो. इफ यू लव सिनेमा, इफ यू लव ग्रेट आइकॉनिक लिरिक्स, देन आई हैव गॉट टू टिकट्स टू गिव यू. गगन मुद्गल आपके लिए लेकर आए हैं जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर. दिस इज हैपनिंग टुमारो. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड अ चांस टू विन टू टिकट्स राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी वेरी हॉट। फिलहाल ह्यूमिडिटी 55% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
1: Mugambo! खुश हुआ।
2: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं। सो बरखा, यू आर लुकिंग आउट ओवर अ रोमांटिक सीनिक फॉरेस्ट व्यू पॉइंट इन बर्लिन, ओके? एंड वहां से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का, गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का
3: नहीं, देसी लड़का चाहिए।
2: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी?
3: देसी में मजा है ना।
2: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो। सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है।
4: कितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम।
2: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में, कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में। कौन सी मूवी का गाना है ये?
3: फना।
2: फना इट इज। कांग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। लव, लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल, ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: जितना भी ट्राई करो भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
3: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।